0: आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा, दुनिया की सैर कराऊंगा। हंसो गाओ, कुछ सुनो कुछ सुनाओ।
1: अंकल हम सुनाए?
0: हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ।
1: जय

0: क्यों रे? तू क्यों चुप है?
1: अंकल, अभी वो नया है, बेचारा शर्माता है।
0: कौन है रे तू?
2: मैं रामपुर का लक्ष्मण हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, मैं भी वहीं का हूँ। फिर हो गई ना तेरी मेरी दोस्ती?
1: बस हो गई।
0: तो फिर दे ताली। तेरी मेरी मेरी तेरी अच्छी हुई दोस्ती। चलते चलते

0: हंस कर कस कर बान। अब मोरे मन पे
1: किटिकिटिताम,
0: मोरे तन पे
1: किटिताम तई।

0: कितना सुंदर, कितना मनमोहक।
1: ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर शांत वातावरण में विचरण करते हैं। अरे देख

जागो, अरे जागो, अरे जागो सोने वाले बर्बधू, इतनी जल्दी निद्रा में तल्लीन हो गए, जागेंगे।

मुस्कराएंगे हम। अरे अरे अरे ये क्या हो गया, हम कहां से कहां आ गए। शास्त्रीय संगीत गवैये अनूप शंकर की धोती लपेट कर कव्वाल मरम्मत खां ब्रदर्स का चूड़ीदार पजामा कैसे पहन लिया। अल्लाह प्रलय।

हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी। अरे अरे कोई दीपक लाओ, बत्ती लाओ, माचिस की डिबिया लाओ और आओ, आग लगा दो।

0: जो न मचले वो तबीयत क्या।
1: तबीयत तबीयत सब रखी रह जाती है जब पैसा नहीं होता।
2: पैसा पैसा पैसा, अरे पैसा।

0: भाइयों और बहनों, देश में संकट है, आप सबसे विनती है कि कौम के लिए चंदा दीजिए, जेबे झाड़ कर छप्पर फाड़ कर, कहीं गड़ा हो तो उसे उखाड़ कर, अब मैं तो थक गया गला फाड़ कर। तो सबसे पहले मैं अपनी पत्नी का असली हीरो का हार अर्पण करता हूँ।
1: असली नहीं है,
0: पता है नकली है।

0: काहे का डर है,
1: बाली उम्र है।
0: अरे छोड़ो बहाना
1: नाना,
0: रोज नई हिरविन से लिपटू प्यार के गाने गाऊं, तू जल भुन कर माथा पीटे और मैं नोट दिखाऊं, और मैं नोट दिखाऊं। इसीलिए तो कहता हूं कि पैसा

0: मोहब्बत है।
1: हाँ हाँ
0: हमको तुम्ही से मोहब्बत है।
2: जाओ दीवाने वरना मारूंगी एक गुस्सा।
0: मैंने पहली ही बार देखा गुस्सा हसीनों का, पहली ही बार देखा गुस्सा।
2: कैसा लगा गुस्सा?

0: पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा। सुनो सुनो तो
1: नहीं।
0: सुनो भी
1: नहीं।
0: मैंने यूं ही छेड़ा था तुम अकड़ गए, छोटी सी एक बात पर क्यों बिगड़ गए।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: हेलो रेडियो विश्वास।
1: हाँ जी हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ जी बोलिए, कैसे
1: बढ़िया है,
0: हो?
1: अच्छा है, बढ़िया है। फिल्म
0: बोलो बोलो।
1: आपकी कसम से गाना सुनना है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़, और सावन सोमवार के पहले दिन की सभी को शुभकामनाएं।
0: हाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: यस थैंक यू।
1: धन्यवाद।

लहरा के वो चले बलखा के वो चले, डाली जैसे तो लचकती है पतली कमर, शर्माए भी जरा घबराए भी जरा, अभी प्यार की राहों में नया नया है सफर।

मोटे लाला शौकीन गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे तीन अरे

दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल।

0: जय जय जय हो जय राजेंद्र।
1: गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल।
0: जगत नारायण के छोड़ के संतों

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े।

हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: अरे बाप रे, इतने में आ गया उसका भाई, कहने लगा
1: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे।
0: उसका भाई था अक्सर भारी,

तो धूम मचा के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है। ओ मेरी लॉटरी।

अब तो तुमको झुकना होगा, मेरा जमाना आया। छुट्टी करके छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, वो मेरी लॉटरी।

0: हेलो रेडियो विश्वास।
1: हाँ जी हाँ जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ जी बोलिए, कैसे
1: बढ़िया है,
0: हो?
1: अच्छा है, बढ़िया है। फिल्म
0: बोलो बोलो।
1: आपकी कसम से गाना सुनना है, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, और सावन सोमवार के पहले दिन की सभी को शुभकामनाएं।
0: हाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: यस थैंक यू।
1: धन्यवाद।

सब है भोली सी कातिल हर कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने मैं तो कहता हूँ उनको

से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा, कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदाओं के खुदा।

0: हेलो रेडियो विश्वास।
1: हेलो हेलो
0: हाँ बोला बोला।
1: ना गाना
0: हो डन कुछ बोलता है।
1: साथी गाना देखे जिन मिल सितारों का आंगन होगा जीवन मृत्यु।
0: हाँ हाँ
1: हो धन्यवाद।

0: हेलो बर्माइश मैडम,
1: बोला ना।
0: एक बर्माइश दे दे दे।
1: हो जाना
0: टीचर का नाम है सूरज, बाहर परिवार का
1: ठीक है। थैंक यू।
0: ओके।

0: सुध बिस राई तररे तररे तररे तररे
1: भूल गया यार
0: तररे तररे तररे ररे ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: आटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में।

अपनी आवाज वाली गोपाल, तुम्हारे खोए हुए सर तुम्हें वापस मिले। हाय देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, कितनो जीवन की बसंत बहार गाओ।

0: वो दिन गए जब तुम्हारा जादू सर पे चढ़कर बोला करता था।
1: जानती हूँ, पर क्या करूँ सरकार, उस मुए जोशी के लड़के ने ना जाने क्या कर दिया है। गोपी तो किसी के परवाह ही नहीं करती।
2: मलैया जाओ और नरसिंह जोशी से कहो कि अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो हम ऐसी कमंद फेंकेंगे जिसमें बाप और बेटे दोनों झगड़े चले आएंगे।
0: जो सरकार।
3: अरे कहाँ भर के यह सुनती नहीं। ओ गोपाल की माँ।
1: क्या बात है जी।
3: हम लुट गए हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है और तू पूछती है कि क्या बात है जी।
1: हाय राम, कुछ कहो तो पता चले।
3: अब कहने के लिए रह ही क्या गया है, ये पिछल पैरा कुंडली इसकी इधर को जाती है और वो उधर को जाता है। मैं ज्योतिषविद का माना हुआ पंडित, इसने मेरे सितारों का हिसाब भी गलत कर दिया है।
1: गोपाल की बात कर रहे हो?
3: और क्या, मैं अपने बाप की बात कर रहा हूँ। तेरे इस लाडले ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और तो सब कुछ किया तो किया, अब एक नाची से इश्क भगाने लगा है।
1: चांद पर मत थूको, मेरा लाल ऐसा नहीं है।
3: बाहर निकलो तो जानो, लोग अंत शंत बातें कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब इस लड़के का हाथ गले तक ही नहीं, सर तक आ पहुंचा। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। लोग तो अब यहाँ तक कहते हैं कि मैं तुम्हें भी ब्याह कर नहीं लाया, भगा कर लाया हूँ।
1: हे भगवान, तो फिर क्या करें? लोगों की जबान थोड़ी ही पकड़ी जा सकती है।
3: हम उनकी जबान नहीं पकड़ सकते, वो भले हमारी टांग पकड़ ले, पगड़ी उछाल दे, इसने तो जोशी कुल का नाम दबो दिया है। कोई यहाँ तक नहीं टिकता, सबके सब बाप दादा और लकड़ दादा तक पहुँच रहे हैं और ये सब दोष तुम्हारा है।
1: मेरा दोष कैसे हो सकता है?
3: तुमने तो जल्दी की, अगर 2 घंटे इसे देश से जनती तो इसकी कुंडली ही बदल गई होती, लगन बदल गया होता।

0: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम्हारा पर इंजन चला देगा।
1: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया, ठीक है। मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, यह इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा हो, ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
2: सोता है बहुत जागा है ना।
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उस

0: भोले भाले ललुआ, भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम।